अच्छा सफर की का को अलाम चला वाले माचा सफर के अक्वर से बला वाले माचा दो वक्त एक चरसा